बाहर गाने चिप्स को दी तेरे तब हिंदू री शहर के हम शिखते मरने की हिंदू स्कूल का जश्न आशु मरने वो तो जश्न से हिंदू थोड़ा दूर बसु उन मरन उन्हीं मरन बिशे